0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया थे आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: के दोख में खतो
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है गा।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए
1: रुक दे खट्टा
3: चाचा सिरे ही लाई जाना ओए ता हाले उरे रहेगी सिरे ता होन लाउन लगिया आंदिया एक कारी के तेरे अर का बंदा ब्यूटी पार्लर दे शेव कराउन चलिया गया ते जाके पुछदा किन्ना टाइम लगू मालक कहना भाई चार पांच के बंदे बैठे आ पहला इना दी हिजामत कर लिए उदो बाद थोनू मोन दिंदे आ कहना तुसी नबेड़ लो मैं फेर आ जाना दूजे दिन फेर आ गया आ शेव कराउनी आ किन्ना टाइम लगू ओ कहना मूहरे तीन के बंदे बैठे आ बस घंटा के लगू कहना चल नबेड़ लो मैं फेर आ जाना तीजे दिन भतीज फेर आ गया आ शेव कराउनी आ जी किन्ना टाइम लगू ओ कहना बस एक बंदा रहिंदा 20 मिनट लगने इस तों बाद तुहाडी वारी आ कहना तुसी नबेड़ लो मैं फेर आ जाना ब्यूटी पार्लर वाला बड़ा हैरान परेशान ओ अपने नौकर नूं कहिंदा गल सुण ओए तीन दिन हो गए इनू आउंदे नूं पुछ के चले जांदा किन्ना टाइम लगू वेख के साला किधरों आउंदा नौकर पंजा मिंटां बाद आके रिपोर्ट दिंदा
4: कि शाह जी ये आउंदा पता नहीं किधरों आ पर टाइम पुछ के सीधा जांदा छोटे घर नूं
5: अरुण रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी
6: ब्याह बारे कश्मीर दी कहावत है कि कुआरे ब्याह करवाउण नूं तरसदे हन ते ब्याहे पछताउंदे हन सोहणे विचार

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो। accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करण लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

0: केड़े मंत्री ने कीता एक बार फिर लोकतंत्रता नु नीलाम ते केड़ी बॉलीवुड हस्ती दे प्यार दे चर्चे हो गए आम। इस सब नाल सानू जानू करवाएगा तुहाडा अपना हरमन रेडियो। तो जुड़ो हरमन रेडियो दे नाल ते सचेत होवो अपने आले दुआले बारे, अपने देश बारे, विदेश बारे। इत्थे तुहानू मिलणगियां ना सिर्फ खबरां बल्कि खबरां दी मरम्मत भी, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लेके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबर का सिलसिला। देश ते विदेश दिया खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: रोटी हजम नहीं होंगी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल दा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो
1: 4285564। लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर, जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती, नाले तेरी ताई कहंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

0: नवे हिट भी सुनो, याद करो पुराने गीत। हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन।
1: मेरे वीरो भैनों बच्चियो बुजुर्गो भाभीओ देशा विदेशा च बसते सारे पंजाबीओ प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरे झगड़े छड़ के दो मिनट हसो
2: जट्टा के मुंडे साडे नाल है चंडा गाड़ के बदमाशी करना है
3: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
4: चाचा जी जे तुसी अपने आप नू इन्ना चतुर समझदे हो ना स्वाद तां ता है जे कौन बनेगा करोड़पति विच जाके करोड़ रुपया जीत के लियाओ
5: ओए बीबा मैं ना जीत के लिया मेरा मुंडा लाया गल तां इक्को ही आ
6: चाचा जी उन्हें 15 दे 15 सवाल सही दसदे
5: हां ओ भी बिना किसी लाइफ लाइन दे अमिताभ बच्चन कहिंदा भैया पहला शख्स मेरे प्रोग्राम दा जिन्हें बिना किसी जीवन रेखा की मदद तो करोड़ रुपया जितया भाई धन ने मां बाप जिन्ह ने तेन जमया काका की मैं तेरे पिता जी का नाम जान सकदा
4: फिर की कहंदा
5: कहना जी लाइफ लाइन यूज कर सकदा कहंदे केड़ी लाइफ लाइन यूज करनी है पतंदर ने मेरे नाल गल करनी उचित नहीं समझी सगो कहना बठिंडे मेरी बेबे नाल गल कराओ जी फोन ते लो जी फोन बठिंडे सीधा आतरो दे घरे जा बजिया अमिताभ बच्चन कहंदा आतरो जी मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं
6: फिर चाची की कहंदी
5: कहंदी बू मैं मर गई 70 साल का होके हे तक बोली जाना कहना जी अगली बात थोड़े मुंडे दी आ मुंडा कहना बेबे 30 घंटा दे अंदर अंदर मेनू मेरा बुढ़े का नाम दस दे की आ
4: फिर चाची की कहंदी
5: ओ कहंदी पुत 30 घंट का बहुत ज्यादा ने मैं तो 2 सेकंड के दस दू पर पहला लंबू नू कहता सही के डब्बियां दिखा के 4 ना तो भरे केड़े केड़े ने
6: पर चाचा लाण तो हजे करोड़ रुपए दे इनी गल सुन के तेरा मरन नहीं होया
5: मरन क्यों नहीं होया भतीज पर इनी गल सोच के फिर सबर कर लिया
4: केड़ी गल
5: भाई मान इज्जत सांझा बेइज्जती अपनी अपनी
7: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग

0: तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: गोरखनाथ ने पूर्ण भगत नु खूह विचों बाहर कढ लिया। हाथ पैर तेरे किवे वड्डे ने, पूर्ण रो रो के गोरखनाथ नु दस रहा है। दसी भाई खुश देर खेलिया वालिया की कहिंदा है।

Sub-Zero. मुझे बस तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए और एक चीज और चाहिए, तेरे हाथ का बनाया हुआ पैक भी चाहिए गाके।

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
1: एक अफ्रीकी कहावत अनुसार पुत किरली का शिकार भी कर लवे ता बाप उसते मान करता है। चंगे विचारां ले जुड़े रहो अर्बन रेडियो दे नाल।

योग्यता बारे सियाने कहंदे हन कि 100,000 फौजी इकट्ठा करना पर मुश्किल लभना एक जरनल, विद्या विचारी ता पर उपकारी।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: योग्यता बारे नीदरलैंड की कहावत है कि फांसी लाउन वाले दे घर चो रस्सी हमेशा मिलेगी। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: हरमन रेडियो तमाल बा कमाल।
1: भ्रष्टाचार बारे सियाने कहंदे हन कि जो लोग सरकारी नौकरी तां करदे हन पर लोकां नूं प्यार नहीं करदे, ओह तनखाहां चोरी करदे हन। विद्या विचारी तां पर उपकारी,

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: मैं रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन
2: कुड़म विगुत्ता चंगा गुआंड विगुत्ता मंदा।
3: इस दा पाव है कि संबंधियां नाल विगाड़ तां कदी कदी दुखी करदा है, परंतु गुआंड नाल विगाड़ सदा ही दुखी करदा है।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने आ एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल।
1: एक अफ्रीकी कहावत अनुसार बांदर दी पेंट किन्नी भी पीड़ी क्यों ना होवे फिर भी उसकी पूछ जोगी थां इस विच जरूर होंदी है। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: चल चलिए एक दुनिया बनाइए, विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलिया दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली योर्स।
1: जत विच अन्ना जोर है ते चढ़दी जवानी है, दौलत शौहरत पल्ले है, मोटे बंदे खानी है। जट किवें अपनी महबूबा नूं तसल्लियां दिंदा है, जग्गी जागोआल दा गीत है, जस्ट दा संगीत है, रै

0: Radio 24/7.
1: माँ पूर्ति पितापुर कोड़ा बहुत आ नहीं ता थोड़ा थोड़ा।
2: इस दा पाव है कि ती दा सुबा माँ दे सुबा वर्गा अते पुत दा सुबा प्यू दे सुबा वर्गा हुंदा।

0: Carmen Radio
1: 24/7.
2: एक बेल्जियम कहावत अनुसार अनुभव ओ कंगी है जिहड़ी कुदरत सानू उदों दिंदी है जदों असी गंजे हो जांदे हां। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी शरणी पाईऐ।
1: सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने, आखदे ने कि जीव नू किस दी शरण विच पैना चाहिदा है। जो सारिया सुखां नू देण वाला परमेश्वर है, जो सारे जीवां दी प्रतिपालना करन वाला वाहिगुरु है, जो सारिया नू दाता देण वाला वाहिगुरु है, उस दे सरगुण स्वरूप सतगुरु दे पावन चरण शरण विच पैना चाहिदा है। गुरु ते परमेश्वर इको रूप हन, गुरु परमेश्वर इको जान। भाई साहब भाई गुरदास जी आखदे ने, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। गुरु नानक देव जी महाराज जी नू अकाल दा रूप आख रहे ने भाई गुरदास जी। भाई साहब भाई नंद लाल जी आखदे ने, हमू नानक अस्त हमू अंगद अस्त हमू अमरदास अफजलो अमजद अस्त, हमू रामदासे हमू अर्जन अस्त हमू हर गोबिंद अकर्मो एहसन अस्त, हमू अस्त हर राय करता गुरु बदाशकारा हमा पुष्टरु, हमू हर कृष्ण आमदह सर बुलंद अज हासिल उम्मीद हर मुश्त मंद, हमू अस्त तेग बहादुर गुरु के गुरु गोबिंद सिंह आमद अज नूरेउ। ओही नूर परमेश्वर दा उसे ने गुरु नानक तो लै करके दस गुरु दे रूप जेड़े ने सरगुण स्वरूप उसे अकाल पुरख वाहिगुरु दे नूर ने जोत ने धारण कीते ने। सतगुर अर्जन देव जी महाराज जी आखदे ने, उसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सरगुण स्वरूप जो सतगुरु है उस दे शरण दे

0: जी इथे इस पावन शब्द की संपूर्णता करते ने गुरु महाराज बख्शिश करते ने भाई जेडे हरी अकाल पुरख वाहेगुरु की शरण विच गए ने जिन्होंने परमेश्वर का नाम जपया है दास बन करके दासत्व भाव हिरदे विच ग्रहण किया है उही साध संगत जी संसार विच प्रवाणनीक होए ने उही साध संगत जी लोक ते परलोक विच उन्हां नूं सुखां दी दात प्राप्त हुई है जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नूं जपया है। सो इत्थे इस पावन शब्द की संपूर्णता समय दी समाप्ति पुल चुग दी खिमा
1: तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ सो हर जपै जिस गुर मन

गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, तुसी सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित हो रही अमृतमई बाणी दी अमृत कथा। अज दी कथा विचार दे प्रोग्राम दी इत्थे समाप्ति दी आजाद चाहुंदा हां। तां कल मिलदे हां जी इसे समय, तद तक लई तुसी आनंद मानो। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया तो ब्रॉडकास्ट हो रहे होर प्रोग्रामां दा ते मेनू दियो इजाजत। रब रखा। वाहेगुरु जी का खालसा।

मेनू पहली बार धोखा दिता है थानू शर्म आनी चाहिदी है तुसी मेनू दूजी बार धोखा दिता है ता मेनू शर्म आनी चाहिदी है अगर तुसी तीजी बारी किसे नू धोखा दिता है ता साडे प्रशासन नू शर्म आनी चाहिदी है जेकर चौथी बारी धोखा दिता है ता साडे समाज नू शर्म आनी चाहिदी है चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

खूबसूरत आवाज का सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज भी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया. For more information, send us message on info@harmanradio.com.

0: के दो मिनट हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
2: होर ते होर अजकल एक पोस्टर लोगों के हाथ आ गया, एक फोटो जी जिदे च एक कुड़ी केकर थले गोडिया च मुंह लको के बैठी है।
3: ये ते गल ठीक है, पंजाब दा केड़ा ट्रक रिक्शा बस टेंपू ट्राली रेहड़ी स्कूटर ऐसा होएगा जिदे पिछे पोस्टर नहीं लगा होएगा।
2: ओ सुडी पलवान, होर ते की, पिछे जे मैं वेखिया साडे लागे एक रोड़ी कुटन आला रुलदू रहिंदा ई।
3: हां,
2: ओनू होर कुछ नहीं लभा, उन्हें अपने खोते दी पूछ मगरे पोस्टर बने होए ऐ। ये तो शुक्र है कुड़ी का मूंह गोडिया च लुकिया, नहीं तो बेचारी वैसे नहीं सी किसी मूंह विखाउण जोगी रहनी।
3: महाराज वो पोस्टर है ही बहुत कमाल दा, ते लोकां ने कदर ता करनी चाहिए ना। वो यही तो पंजाबियों की खासियत आ, पंजाबी हर चंगी चीज की हर चंगे कलाकार की कदर करते।
4: कॉमेडी आवर हरमन रेडियो।
5: ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀ।

0: भाई छोटे हैप्पी जयन भाई।
1: हंसते रहो बसते रहो हरमन रेडियो।
2: वेख लैनी जट छाए होए रीला ते।

0: Carmen Radio 24/7.
1: मैं कहा ए कोई गल ते नहीं ना, मैं कहा ए कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना, सजना ए कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना, मेरे दिल चो निकल भी सकना है, मेरे दिल चो निकल भी सकना है, दिल है कोई दल दल ते नहीं ना, इश्क तो मैं अनजान ही सही, इश्क तो मैं अनजान ही सही, पर तैनू भी ते कोई वल ते नहीं ना, मन्या बंदे इको जे नहीं, मन्या बंदे इको जे नहीं, पर तेरे गल टल दे नहीं ना, मैं कहना लहू इको जे ने, मैं कहना लहू इको जे ने, ओ कहिंदा ए खल ते नहीं ना, ते दुनिया मैथों बागी साबर, ते दुनिया मैथों बागी साबर, तू दुनिया दे वल ते नहीं ना, मैं क्या ए कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना, चुप मसले दा।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ?
3: ये हिप्पोपोटामस नहीं, मेरा कुत्ता है।
2: अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटामस के साथ?
4: हाय, जैसे परेश रावल और रेडियो हार्मन सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: किन्ना चिर हुन वक्त रहना सहा ले ते बेड़ी पुठी तोर ले मल्लाहा ले ते याद उना दी चप्पी पाके कुट ले हिम्मत कीती चंद चेते दिया बहान ते कौतक है जा मेल तेरे दा ए जादू हासे ते कर कुल्ली पाई आहन ते तेरे वसलां दी हांडी विच रचन तेरे वसलां दी हांडी विच रचन नू के नहीं किता आस मेरी दे महान ते फुल्लां ते हासे नू फल्लां पाईया ने तितली काबू करके पिंड दे साहन कीते मुखड़े नाल मिलावा नजरां नू सब सजना दे चेहरे हेठ उतहां ने तेरी चो कुछ दिन ठहरो बूहा मल्लांगे अजकल सोचा याद दिया कुछ ताहां ने ते याद दिया गलियां विच लैके घूमनगे होर किथे ले जाना सुनिया राहां ने ते वक वक समसां तरसौंदे ने चाले नूर एवें रल के तुरन दियां अफवाहां ने अफवाहां ने।

युद्ध बारे रोमन दी कहावत है कि शांति कायम करन लई युद्ध दा दिखावा ही काफी हुंदा है। सुने विचारां दे अंग संग हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया नाल।

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देन ले जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करन ले संपर्क करो। अकाउंट्स एट harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24
2: रेडियो
0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत सैड गीत पंजाबी शायरी विचार अते पुराना गीत
3: Harman Radio 24/7
4: Sad ya romantic geetan de shaukeen ho

0: Carmen Radio
1: 24/7.
2: पीड तेरे जान दी कितना चढ़ांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं की करांगा प्यार दी लुट्टी बहार नर सजियां सजाइयां महफिलां हुंदे शिंगार मर हथी मरी मुस्कान दा मातम करांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं जे रो पिया ते कहनगे दीवाना हो गया ना बोलिया ते कहनगे बेगाना हो गया लोकां दी इस जुबान नू कितना फड़ांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं साहां दी डुबदी नाव नू चौंका मिले जना इस जहान मिलन दा मौका मिले जना अगले जहान मिलन दी कोशिश करांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं सजना जरा को ठहर जा सजदा ते कर लवां अथरू ना कोई वेख लवे परदा ते कर लवां माना दिला दी सीच ते पत्थर तरांगा मैं ओ जान वाले अलविदा इन्नी कहांगा मैं पीड़ तेरे जान दी कितना चरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं पीड़ तेरे जान दी कितना चरांगा मैं

0: What's happening in music, culture, community events?
1: Hardman Radio
2: brings to you the best from UK, Canada, USA, and India.
3: This is a special, something completely different.
0: What's happening in music?
4: Smashing comedy.
5: Candy.
6: कौन है भाई सवेरे सवेरे
7: तेरी तां घर दे बेचना हुण दवानी दी इज्जत नहीं
8: साले असी भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां
7: जेड़ा वो कंजर बाहरों आया ओदी संग कर लो
9: गो कैन आई गो नाउ
10: हरमन रेडियो।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: हाजिर हो वाजिर हो ते जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तेरी तरह मुझे कौन चाहेगा। तुझे जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगी।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो। हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझा देण लई यूट्यूब उपर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

0: तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: दो दो घोड़े महगनानी चार जी वहगनानी उत्ते नू मैं शे शे इंच चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू

0: के धूप में फसो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: औलाद ले बंदे नू की पापड़ वेलने पैंदे है।
3: आहो ते औलाद भावे अगो पापड़ा दा कौड़ी मोलना पा। अजकल दी कलयुगी औलाद वेखी दी है, मुंडा अपनी वहुटी ते अपने बच्चे लैके अंदर एयर कंडीशन कमरे च सुता हुंदा, ते बलदी दुपहरे बुढ़ा प्यो बाहर अपनी मंजी तो खूंडी नाल कुत्ते नू उठाउण डिया हुंदा। ते कुत्ता भी अगो कूरियां पा के आखण डिया हुंदा, बहुता चौधरी ना बन, मेरी ते तेरी कुछ नहीं इज्जत इस घर च।
2: ते कुगी साहब कई नूआं एडियां करख्त हुंदियां ने, बंदे नू शिकायत लाउणगियां कि बापू जी सारा सारा दिन वेले रहिंदे ने।
3: ते बंदा पूछे भी भलिए लोग 90 सालों तो उपर दा हो गया बाबा, ओनू हुण मिलिट्री च भर्ती करा दईए।
2: ते कई कहणगियां बापू जी कोलों वो बड़ी आउंदी है।
3: ते हुण दस भी बापू लाके धूफ बाल के रखीए।
2: ते कईआं नू तां इतराज़ हुंदा भई साडा बाबा बोलदा बड़ा है।
3: आहो तुसीं ते उडीकण डए हो भी कदों बाबे दी बोलती बंद होवे ते सारा माल सांभीए। साडा इक ताया सरकारी महकमे चो रिटायर होया, रिटायर कदों होया बेचारे नू वक्त ही पै गया। एक नू आउंदी आके कहिंदी पापा जी हल्दी ते लिया दिओ।
2: अच्छा।
3: दूजी कहेगी पापा जी सून दी दुकान तो बेसन ते फड़ियो। हां तीजी कहेगी पापा जी आ काका चुक्यो जरा। कोई मुंडा आके कहेगा बापू जी कपड़े ते प्रेस करा के लिया दो। नू जाके कहेगा डैडी जी आ बिजली दा बिल जमा करायो। एक दिन साडा ताया दुखी होके कहिंदा यार मैनू ते समझ नहीं आउण डई वी मैं ताडा फादर हां के बहादर हां।
2: दरअसल घोगी साहब ए बुजुर्गां दी उम्र फिर ऐसी हुंदी है कि इस उम्र च हर बुजुर्ग इहो चाहुंदा कि उहनू घर चों प्यार इज्जत ते आराम मिले।
3: पर कई मतलब प्रस्त बच्चे इन्हां गल्लां ते जरा भी ख्याल नहीं रखदे। आपणे पिंड वाला बचेतर सिंह नहीं उहदा किस्सा याद ही।
2: हांजी
3: एक दिन आपणे मुंडे नूं कहिंदा पुत्तर मेरी उम्र वडेरी हो गई है काका, मेरे कोल हुण काम नहीं हुंदा, मैनू कमां करां तो छुट्टी दे।
2: अच्छा।
3: ते मुंडा अगों फराख दिली नाल कहिंदा इह कीड़ी गल है बापू, ले फिर अज तो बाद तेनू कोई काम नहीं कहना, अज तो बाद तू मौजी ठाकर।
2: अच्छा।
3: मौजां लै के अगले दिन सवेरे उठदे कहिंदा बापू मैं चलिया खेत नू डंगर छावे बन के गतावा कर दई ते फेर तू मौजी ठाकर।
2: अच्छा।
3: बस मौजां लै के जान लगा फेर कह गया डंगरां नू नवा के दुपहरी मेरे लिए रोटी लै आवी खेत फेर तू मौजी ठाकर। मौजां लै के बापू मर गया बेचारा, डंगरां नू छावे बन डंगरां नू गतावा कर डंगर नवा दुपहर हो गई।
2: अच्छा।
3: उतो रोटी लै के खेत वल तुर पिया बेचारा। खेत जा के मुंडा कहिंदा बापू जब तक मैं रोटी खाना बल्द खड़े क्यों करने हैं, तू ऐदा कर दो सियाड़ तू कढ़ लै फिर तू मौजी ठाकर। मौजां लै के दुखी होया बापू बेचारा, हल फड़ के हल वाउन लग पिया। मुंडा रोटी खा के सौ गया। शाम तक बेचारा बापू कला ही हल वाउंदा रहा। शाम नू जदों मुंडा उठिया ते उठ के कहिंदा बापू लिया हल मैनू फड़ा ते तू इथों पठे वड के लै जा घर जाके कुदरे डंगरां नू पा दई फिर तू मौजी ठाकर। मौजां लै के गुस्से दा भरिया पीता बापू बड़े दुखी जे माना पठे वड्डे, पठिया दी पंड सिर ते रखी तुर पिया। हुण सारे दिन दा थकिया सी, तुरे जांदे दा पैर थिड़क गया बापू थले ते पंड उत्ते। हुण बुजुर्ग शरीर सी पंड थल्यों निकलिया ना गया। उधरों मुंडा जदों खेतों वेला होके घर नू तुरिया नेरे च उहने पंड थल्यों दो पैर जे निकले वेखे।
2: अच्छा।
3: ते फिर उतों ही पुछदा कहिंदा ओए आ केड़ा वो पंड थले पिया। ते बापू फिर सड़िया बलिया पंड थले बोलिया
2: की
3: कहिंदा पांड चाखे वेख तेरी बेबे दा खसम पे आई मौजी ठाकर मौजा लैण लिया के।
4: हरमन रेडियो
5: 24 घंटे 7 दिन।
6: जे तुसी खुद अमल करन वाले बन जाओ ता दूजे आप ही तुहाडे नक्शे कदम ते चलणगे। विचार महात्मा गांधी। अजिहे खूबसूरत विचारां लई सुनदे रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकदे हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देन ले जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करन ले संपर्क करो। accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे।

विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।

रोजाना श्रवण करते हो प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। इस प्रोग्राम विच नितनेम शब्द कीर्तन गुरबाणी विचारां अते सिख इतिहास पेश कीता।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

करै विचार, करते कै करनै नाहीं समार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर, तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी

तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था परकी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, तां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, तां के रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत नांत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव

दर्शन प्यासी दिन सरात चितमो अंधन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। राग जैसी विचों पंचम पातशाह जी दे ए पवित्र बोल कि जिन्ना गुरमुखा नू दिन रात उस परमात्मा दे दर्शना दी लोचा रहिंदी है। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताए बिलप करे चात्रक की नाए। उन्हां दी चितवना उन्हां दा चेता मालक दे नाल जुड़िया है। वो मालक नू चेते रखदे ने गुरु दे अगे अरदास करदे ने। सतगुरु खोल कपट गुर मेलिया साडे मन तों भरमां दे पर्दे ला दियो विकारां विचारां दे पर्दे ला दियो। ये कपट है ना। दरवाजा खुल गया ते सामने अकाल पुरख है। वो मालिक जिहड़ा सानू दर्शन देने लई अंदर बैठा है पर गुरु दे नाल गुरु दे राही उसका मेल होना है। नानक हर संग मीत फिर उस हरि दे मित्र बन जाना है। तू तू करता तू हुआ तो आओ गुरवाणी दे इस पवित्र शब्द राही उस मालिक दे नाल अपना संजोग बनाइए उदे नाल जुड़ना कर।

जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। लोकाई मौत तो डरदी फिरदी है, पर भगत कबीर जी कहिंदे मरण तो ते बाद परम आनंद दी प्राप्ति हुंदी है। बड़ी हैरानी दी गल लगदी है ना, क्योंकि साडे वर्गे ते रोज बिमारियां दुश्वारियां एक्सीडेंटा नाल घुल घुल के मर रहे ने, पर भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां इउं कहिंदे दिसदे ने, कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो त हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे भार। क्या अंदाज है, मरना भी है ते ओ भी हरी दे द्वारे ते। भाई मती दास जी दी शहीदी दी तैयारी हो रही सी, लकड़ां दे शिकंजे विच जकड़िया होया सी, दो जलाद बड़ा सरारा फड़ी मती दास दे शरीर नू दो फाड़ कर ली तैयार खड़े सन। काजी ने भाई मती दास नू आखरी इच्छा पुछी, तेरी कोई आखरी ख्वाहिश है? कहिंदे ने, मेरी आखरी इच्छा है कि मैनू शहीद करन तों पहला मेरा मुंह मेरे मुर्शद वल भाव धन गुरु तेग बहादुर जी वल कर दिता जावे। किस किस गुरसिख की गल करिए, कदे मौका मिलिया तां शहादतां दे टॉपिक ते खुल के सांझ पावांगे। राग वड़हंस विच धन गुरु नानक पातशाह इउं दर्ज करदे ने, जिसका सरलेख है अलाहिया, इस बाणी विच सूरमियां दे हक भाव कुरबान होण बारे एक शब्द पवित्र अंग 580-81 उपर दर्ज है। आओ ये शब्द सरवण करदे हां। मरन मुनसा सूरियां हक है, जो होए मरन परवानो, सूरे सही आगे आखिया, दरगे पावे साची मानो। इस पवित्र शब्द का कीर्तन रूप विच गायन कर रहे ने हजूरी रागी भाई गुरिंदर सिंह जी बटाले वाले, ते उन्हां दा जथा आओ सरवण करिए। मरन मुनसा सूरिया हक है, जे जो होए मरण परवानो।

हे पार ब्रह्म तू बेअंत है, तेरी कुदरत बारे वर्णन नहीं किया जा सकता। जिवें जिवें तू साडे मना विच अपनी वड़ियाई बख्शदा है, उवें ही असी तेरे गुण गा लेंदे हां। तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी, तेरी कुदरत कहण न जाई, सच्ची तेरी वड़ियाई, जाको तुद मन वसाई, सदा तेरे गुण गावे। एडी वड्डी तेरी कुदरत है, तू किन्ना समा इस कुदरत नूं साजन विच लाया होएगा। तां सतगुरु जी इउं फरमान करदे ने, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। उन्ने तां इको बचन दे नाल ही सारी सृष्टि साज दित्ती, ते असी सोचदे हां बड़ा समा लगा होएगा। भाई गुरदास जी सतगुरां दे बचन ते अपनी 38वीं वार विच इउं लिखते ने, एक कवाओ पसाओ कर ब्रह्मांड पसारे, कर ब्रह्मांड करोड़ लख रोम रोम संजारे। ओ गुरु प्यारिया, आपां एक घर बनाउंदे आ ना, ते ओदे विच किन्ने पिलर खड़े करदे आ, किन्ने बीम पाउंदे आ, पर अकाल पुरख ने बिना थम्मा तों, बिना किसी थम्मी तों, बिना किसी आसरे तों असमान रूपी छत पा दिती है। एहो जिहा नजारा वेख के तां वसमादक होना बनता है ना। बाज थूनिया छपरा थामिया, निधरिया कर का निकरिया कर पाया, बिन जड़िए जड़ियो जड़ावा, थेवा आश्चर्य लाया रे। भगत कबीर जी तां इन्ने वसमादक होके फरमान करदे ने, ऐसो आश्चर्य देखियो कबीर, दद के पोले बरोले नीर। आओ गुरु प्यारियो, राग भैरव विच पंचम पातशाह दा बख्शिश कीता होया एक शब्द सरवण करदे हां। आश्चर्य तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, शब्द कीर्तन सरवण करा रहे ने भाई साहिब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। एक गल होर कि सतगुरां ने इस पवित्र शब्द दे रहाओ दे बंद विच इन्ना विस्माद दे दिता है, खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम, झूठ झूठ झूठ झूठ दुनी गमान। किन्नी आश्चर्यता प्रगट कीती है आश्चर्य तेरी कुदरत। आओ सरवण करिए इन शब्द।

हमी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। राग गुजरी दी बाणी विचों गुरु नानक पातशाह दी पंचम जोत यों बख्शिश करदे ने कि मालिक इस मनुख इस जीव दे वस कुछ नहीं है, डोरी सारी तेरे हाथ विच है प्रभ, डोरी हाथ तुम्हारे, जिवें तू बुलाउना है ना ओवें जीव बोलदे ने, ओवें तेरा जस गाउंदे ने। कुदरत दा ए अथा खजाना मालिक ने बख्शिश कीता जरूर है, पर खेड अपने हाथ विच रखी हुई है। बस एक कृपा कर दियो, साध संग नानक जस गायो, मैं साध संगत विच अकाल पुरख तेरा जस गाउंदा रवा, नानक नाम त्यौंदा रवा, जो प्रभ की अत प्यारी, जो प्रभु नू अति प्यारी लगन वाली वस्तु है। नाम त्यायन सुख फल पायन आठ पहर आराधे, ता आओ उस मालक दी बंदगी विच उसके नाम त्यौन विच इस पवित्र शब्द दे राही जुड़ना कर।

जत जत जाइए तत दृष्टाए। राग बिलावल विच्चों गुरु नानक पातशाह दी पंचम जोत धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र बोल कि दुनिया दे विच एहो जे बड़े विरले विरले टावे टावे जीव ने जिन्ना ने यह ज्ञान पा लिया। केड़ा ज्ञान? कि मैं जिथे भी जाता मालक वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, हर एक दे लई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इन्हां विच कोई अवस्था का फर्क होएगा। किसी ने सोचा मैं मंदिर विचों रब पा ला, किसी ने मस्जिद विचों, किसी ने उसकी नमाज अदा की, किसी ने उसनू पूजा अर्चना की। पर सतगुरु कहिंदे ने कोई विरला विरला इहो जिहा भी है जिसने उसनू मालक नू पाउण दा उपराला किया। जिन्ना चिर साडी हौमे है उन्ना चिर असी अपने आप नू वंडिया होया है। पर जदों हौमे दूर हो गई फिर जिथे जिथे भी असी झाती मारांगे वो मालक जिहड़ा एक है वो आप ही दिसेगा। तां उस मालक दे नाल जिहड़ा एक है आओ जुड़ना करिए इन्हां पवित्र शब्द दे बोलां दे।